0: ये तो दरे रिसाचन कोलेन खाई
1: खै यति करलान्द न नगाउने के गथे
2: मुहा बिराली छ क्या
3: हे के भनम खै